प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वर रंजनी, उस्ताद अहमद रजा द्वारा राग अहिरतोड़ी में आप सुनेंगे विचित्र वीणा पर उनका वादन। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वर रंजनी।